हेलो और नमस्ते सिडनी वालों को. मेरा वीना शशि कुमार का मैंने नया एक शो शुरू किया है. इसका नाम है इंडिया कनेक्ट और हम इस शो में बात करेंगे इंडिया रिलेटेड चीज़ें बात करेंगे. ट्रेडिशंस, मूवीज़, क्या आ रहा है, आप यहाँ क्या कर रहे हो कम्युनिटी में और क्या हम कर सकते हैं एक साथ हमारे कम्युनिटी के लिए. तो इसमें पहला शो है तो इसके लिए हम मैंने सोचा कि ये बार हम थोड़ा नॉस्टैल्जिया, पुरानी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, चीज़ें याद करेंगे. जैसे जब मैं यहाँ आई थी, मेरा क्या मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, मेरी क्या क्या चीज़ें अच्छी गई और क्या क्या चीज़ें इतनी अच्छी नहीं गई. क्योंकि हम सारों का थोड़ा एक्सपीरियंस तो होता ही है इस चीज़ों के बारे में, लेकिन मुझे लगता है औरतों को कुछ ज़्यादा ही एक्सपीरियंस होता है. क्योंकि हम ना शादी करके अपनी माँ के घर से एक नए घर में जाते हैं जहाँ चीज़ें अलग होती हैं, नई चीज़ों को समझना पड़ता है. तो मेरे लिए ये इंडिया से यहाँ आना थोड़ा वैसे ही था. घर से ससुराल आई थी और चीज़ें नई थी लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग भी थी. तो इसलिए मुझे ना काफ़ी चीज़ें अभी याद भी हैं. 20 साल हो गए यहाँ आके लेकिन बहुत सारी चीज़ें याद भी हैं. और हम क्या सोच के आए थे यहाँ और क्या करने आए थे, ये सारी चीज़ें, सबकी कहानियाँ और सबका जो ये सफ़र होता है काफ़ी अलग होता है. लेकिन मैं आज अपने सफ़र के बारे में आपसे बात करूंगी थोड़ा सा. और अगर आप मुझे जानते हैं या फिर आपने मुझे कहीं पहचान लिया, मैं तो इसके बारे में बहुत बात करने वाली हूं कि इंडिया कनेक्ट हमने शुरू किया है. तो या फेसबुक में या व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम में आप मुझे दिख गए, आप तो डेफिनेटली मुझे पकड़ लीजिएगा और मुझे बताइए कि आप क्या कर रहे हैं. क्योंकि आज मैंने जैसे मैसेज किया ग्रुप में, बहुत लोगों ने मेरे को कहानियाँ बताई हैं और बहुत सारी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स जो वो कर रहे हैं हमारी कम्युनिटी के लिए, उसके बारे में भी बात किया है. लेकिन जब शुरुआत करेंगे हम इसका, मैं बताना चाहती हूँ कि हम सब यहाँ आते हैं एक आशा के साथ, एक उम्मीद के साथ कि मेरी ज़िंदगी या मेरा जो करियर है, जो हम बच्चों के बारे में सोचते हैं, वो अलग होगा और काफ़ी दिलचस्प होगा. तो इस आशा के साथ हम आते हैं. तो मैंने सोचा हम पहला गाना इससे शुरू करेंगे, एक आशा, उम्मीद. और जैसे हमने ये कैसे हमने शुरुआत की इस ज़िंदगी की, लेकिन पहला जो इकबाल गाना, इकबाल फिल्म का जो गाना है आशाएं, वो ही मुझे पहले याद आता है. तो मैंने सोचा वो पहले हम शुरू करेंगे इस सफ़र की शुरुआत का. तो उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी. तो आपकी इसके बाद और बातें करेंगे.

0: Adriano Coluccio Funeral Services is an Australian-owned and operated funeral home providing dedicated, dignified, versatile and professional funeral services, assisting community members in their time of grief and loss, regardless of ethnicity and religion. Our commitment and compassion is dedicated to setting the highest standard in funeral professionalism and supporting families through what is the most difficult time of their lives. Located in Smithfield and Miranda, servicing all Sydney areas, Adriano Coluccio Funeral Services, always with you. 9604 9604. Station sponsor.
1: Thanks for listening to Alive 90.5. If you enjoy the service Alive provides to the community, then why not become a member of the station today? Head across to our website, alive905.com.au, scroll down the page and click on the general volunteering link to download a membership application. Become a voice of the community with Alive 90.5.
2: Namaste and aapka swagat hai wapis India Connect mein. To India Connect कि जो जो आइडिया था इसमें मैं चाहती थी कि हम बात करें हमारे कहानियों की. इतनी सारी कहानियां हैं और मैं इतने लोगों से मिलती भी हूं तो सबकी कहानियां इतनी अलग और दिलचस्प होती हैं. तो लेकिन मैंने कहा कि पहले पहले मैं अपनी कहानी सुनाऊंगी क्योंकि उसके बाद तो मुझे शायद मौका मिले ना मिले. तो पहला तो जब मैं आई थी ऑस्ट्रेलिया 20 साल पहले, पहले बताया था, तो जब आई एक तो जुलाई में आई थी, इतनी सर्दी, और आई थी मैं मुंबई से. मुंबई में तो भाई जो जानते हैं, इंडिया में तो जानते हैं कि हर जगह पे तो वैसे गर्मी ज़्यादा होती है ठंडी से, ठीक है. तो जब मुंबई से आई तो मुझे लगा मेरे को अवन से उठा के एक तो फ्रीज़र में डाल दिया और सर से पाँव तक ढकी हुई होती थी. सर पे एक टोपी, एक बड़ा सा, अंदर तो थर्मल था ही लेकिन ऊपर से एक बड़ा सा ब्लैक कलर का जैकेट हुआ करता था और नीचे एक बड़े थिक सा फ्लीसी पैंट हुआ करता था और ग्लव्स पहनती थी क्योंकि मेरी शक्ल के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता था. और जब मैं आई और हम रहते थे एक छोटे से यूनिट में, जब पहले पहले आए थे, पुराना सा यूनिट था तो तभी तो इतना जो ये सेंट्रल हीटिंग हुआ नहीं करता था वहाँ. तो मैं क्या करती थी, एक मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था मेरा ऑयल हीटर, जो छोटा सा 3 फिन ऑयल हीटर था, वो सबसे मेरा बेस्ट फ्रेंड था, जो जिसको मैं पीछे अपनी तरह एक मेरे पपी डॉग की तरह मेरे पीछे पीछे घूमता था. और मैंने मेरे हस्बैंड को बोला था कि मुझे एक लंबा सा ये वायर चाहिए जिससे मैं वो हर जगह पे खींच के ले जा सकूं, और उसमें एक होता था व्हील, तो उसके साथ लेके हर जगह पे पपी डॉग की तरह घुमाती थी उसको मेरे पीछे पीछे, चाहे किचन हो चाहे बेडरूम हो या बाथरूम हो, लेके घूमती थी अपने साथ. और दूसरी बात जो मेरे लिए सबसे मुश्किल था यहाँ एडजस्ट करना पहले पहले, कि इतना सन्नाटा हुआ करता था कि भाई मैं तो बॉम्बे में पली बड़ी हूँ, इतनी आवाज़ में पली बड़ी हूँ. और एक तो हमारा फ़ैन हुआ करता था जो जाता था हर रात को, आवाज़ें तो आती थी, उसके अलावा फ़ैन की एक अलग आवाज़ थी, टड़क टड़क टड़क, तो वो आवाज़ मैं मिस करने लगी. मुझे मालूम नहीं था कि मैं ये एक फ़ैन की आवाज़ मिस करूँगी. तो विंटर था तो फ़ैन तो अंदर डाल नहीं सकते, तो मैंने ये किया कि पेडेस्टल फ़ैन लिया और दरवाज़े के बाहर लगा दिया, और दरवाज़े के बाहर लगा के दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि वो अपनी आवाज़ करता रहे फ़ैन का और मैं आराम से सो सकूँ. मेरे हस्बैंड को तो ये तो बड़ा ही ऑड लगा, लेकिन कुछ कर नहीं सके ना. नहीं नहीं, हम लोग की तो शादी होके एक महीने में वो यहाँ आ गया और उसके बाद मैं उनसे उनके साथ तभी रहने लगी थी, तो ये तो उनके लिए तो काफ़ी ऑड था, लेकिन बोल नहीं सकते ना, तो तभी बोल नहीं पाए. अभी बताते हैं, मुझे अभी ताने मारते हैं थोड़े बहुत, बट ठीक है, ये तो ताने तो चलते रहते हैं, 20 साल में तो बहुत सारे ताने चलते हैं. बट ये मेरी 2 कहानियाँ थी. जब ये मैंने अपने दोस्तों को बताया तो उन्होंने मुझे अपनी कहानियाँ सुनाई. जो एक तो था मेरी दोस्त है देवकी, उन्होंने कहा था वो जब यहाँ पहले पहले आई थी, उन्होंने वो चल के जा रही थी कहीं और अपने बच्चे को हाथ में लेके, अपने बच्चे को प्रैम में लेके और सामान वामान खरीद के जा रही थी. सब आते ही किसके पास गाड़ी होती है ना, तो वो चल रही थी अपने इसको धक्का मारते हुए. उनके नेबर ने आके पूछा हाउ आर यू गोइंग, तो उनको लगा कि भाई पूछ रहे हैं कि ऐसे कैसे चले जा रहे हो, बैठ जाओ मेरी गाड़ी में. वो पूरा बंद सामान वामान चढ़ा के बैठ गए गाड़ी में और फिर ड्रॉप करने के बाद उनके नेबर ने बताया कि मैंने यहाँ का ना होता है कि आप कैसे हो पूछने के लिए हम ऐसे पूछते हैं, लेकिन इसका ये इनविटेशन नहीं था, दूसरों की गाड़ी में ऐसे मत बैठना, मुझे प्रॉब्लम नहीं है आपको ड्रॉप करने में, लेकिन दूसरों की गाड़ी में बैठना नहीं, ये यहाँ का कल्चर है। तो ये ऐसी थोड़ी आपके पास भी अगर कोई दिलचस्प कहानी है तो मुझे ज़रूर बताएं। लेकिन जब इंडिया की बात आती है तो फिर हमारे पुराने दिनों की याद आती है, हमारे दोस्तों की याद आती है, तो उसी याद में मैंने अगला गाना चुना है जो है दिल चाहता है शंकर महादेवन का। बड़ा ही प्यारा गाना है और मेरा तो बहुत फेवरेट भी है, तो ज़रूर सुने। और फिर आपकी भी कोई लिस्ट हो, प्लेलिस्ट, तो मुझे ज़रूर बताएं।

0: Live 90.5.
1: The Hills to Hawkesbury Community Newspaper is a family-owned and operated free community magazine. 10,000 copies are printed every fortnight and delivered to 75 different locations across the Hills and Hawkesbury areas. If you're unable to pick up a printed copy, there is free online access at hillstohawkesbury.com.au plus the newspaper's social media sites. The Hills to Hawkesbury team's aim is to inform, involve and inspire, which is why partnering with Alive 90.5 makes perfect sense. Station sponsor.
2: हेलो और नमस्ते और आपका वापस स्वागत है इंडिया कनेक्ट में. मैंने कहा कि ये कहानियाँ तो बहुत सारी इतनी सारी कहानियाँ होती हैं और क्योंकि हम इतने लोग हैं यहाँ और मैं खुद इतने इंडियंस को जानती हूँ, ठीक है, तो मैंने कहा कि हर बार हम एक या दो कहानियाँ शेयर करेंगे जो आप मुझे कॉल करें या ईमेल करके बताएं. लेकिन अभी के लिए मैंने कहा कि थोड़ा इंडिया से दिलचस्प खबरें ले आऊँ, क्योंकि ये हम पॉलिटिकल खबरें तो आप वैसे भी सुन लेते हैं. वैसे इंडिया में एक पॉलिटिकल एक इंडियन मूवी जो नायक आपने देखी तो होगी, साउथ इंडियन में भी बनी थी अर्जुन के साथ और इसमें बनी थी हिंदी में बनी थी अनिल कपूर जी के साथ, ठीक है. वो मूवी में जैसे वो प्राइम मिनिस्टर बने, जो नेता बने एक दिन में, और यू नो ये वाली चीज़ें जो इंडिया में अभी हुई हैं. तो विजय जो इंडिया के जो साउथ इंडियन सुपरस्टार थे, अभी भी हैं, वे चीफ मिनिस्टर बन गए तमिलनाडु के. तो काफ़ी दिलचस्प खबर है वो इसके ये, लेकिन आप गूगल करके देख सकते हैं. मैंने सोचा कि हम थोड़ी ऐसी खबरें ले आएँ जिसके बारे में ज़्यादातर लोग गूगल करते नहीं हैं या फिर जो मेन न्यूज़ में नहीं आता, थोड़ा हट के न्यूज़ में आता है. तो पहली बात तो मुझे एक ये अच्छा लगा न्यूज़, जो प्लास्टिक से रोड बना रहे हैं और बिहार में कोई विलेज है जहां इन्होंने ये इसका पायनियर शुरुआत किया है. ये जो आइडिया था राजगोपाल वासुदेवन जी का, एक प्रोफेसर हैं और इंजीनियर हैं, इन्होंने शुरू किया प्लास्टिक वेस्ट और बिटुमन को मिक्स करके. उन्होंने सोचा एक वाटर रेजिस्टेंट और जो ड्रेन जल्दी हो जाए ऐसा एक रोड बनाएं, और जो विलेजेस में इन्होंने सोचा कि ये इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि रोड भी बने और जल्दी टूटे भी ना और पानी भी जल्दी ड्रेन हो जाए, कि वो पूरा क्लॉग होके हमारा जो रोड होता है जिसमें गड्ढे पड़ जाते हैं फिर क्लॉग हो जाता है फिर पानी भर जाता है, तो इसके लिए काफ़ी काम आएगा. तो ये मुझे काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लगा कि भाई ये शुरू कर रहे हैं और प्लास्टिक को यूज़ कर रहे हैं, जो वेस्ट ऐसे रोड में पड़ा हुआ था. क्योंकि बम्बई में जब वो फ्लड बाढ़ आया था, जुलाई की बात करी, बहुत सालों पहले की बात करी, ऑलमोस्ट 20 साल पहले, तभी आधा तो ये हुआ कि प्लास्टिक से ड्रेन्स भरे हुए थे इसलिए पानी बह नहीं रहा था. तो ये अगर ऐसे रिसाइकल करेंगे प्लास्टिक को, इसका तो बड़ा अच्छा उपयोग हो गया है. और दूसरी कहानी मुझे ये अच्छी लगी कि जो हम सब लोगों ने तो मिशन मंगल तो देखा ही होगा, उसके बारे में काफ़ी कहानियाँ भी आई थी. तो उसमें एक कहा जो वहाँ की साइंटिस्ट थी, इसरो की जो साइंटिस्ट हैं नंदिनी हरिनाथ, उनकी साड़ी इन्होंने स्मिथसोनियन म्यूजियम यूएस में एग्जिबिट किया हुआ है. इंडियन मार्स ऑर्बिट के सक्सेस ऑर्बिटर के सक्सेसफुल मिशन की वजह से, और जो महिलाएं हैं इनका क्या रोल प्ले करती हैं इसके बारे में, इसको दर्शाने के लिए इन्होंने वो उनकी साड़ी एग्जिबिशन स्मिथसोनियन म्यूजियम में लगाया है. ये मुझे लगता है बहुत एक सिर्फ साड़ी की बात नहीं है, एक सिंबल है कि इंडियन महिलाओं के जो सक्सेस और जो पढ़ाई और जो आगे बढ़ने का जो श्रेय उनको हमें लगता है कि हमें कभी कभी श्रेय मिलता नहीं है या फिर उनका नाम दब जाता है कहीं, तो ये एक प्रतिबिंब है उसका कि ग्लोबल स्पेस मैप में हमारा भी कॉन्ट्रीब्यूशन है. तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा इसके बारे में ये कहानी. और लास्ट वाली जो मुझे अच्छी लगी, मैं थोड़ा रिसाइकल और एनवायरनमेंट की बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये काफ़ी अच्छी लगती हैं ऐसी कहानियाँ. तो मदर डेयरी ने एक पहला नेचुरली डिग्रेडेबल मिल्क पाउच निकाला है. तो जो माताएं हैं शायद खुश नहीं होंगी, क्योंकि मुझे तो याद है हम बचपन से हम लोग पे मिल्क की जो कवर हैं वो जमा करके रखते थे भाई पैसे नहीं होते थे लेकिन मिल्क के कवर काफ़ी होते थे तो तो मुझे लगता है कुछ माताएं खुश नहीं होंगी इसके बारे में लेकिन आप सोचो कि मिल्क कवर रख रख के गायब हो जाएं बायोडिग्रेडेबल हैं और लैंडफिल में ज़्यादा जाके कंट्रीब्यूट नहीं होंगे और घर की गंद में भी कंट्रीब्यूट नहीं होंगे डीक्लटर अपने आप हो जाए ये तो भाई मेरा बहुत लोगों का ड्रीम है क्योंकि हम बचपन में ऐसे ही पैदा हुए थे कि मिल्क कवर जमा करते करते लेकिन अगला गाना सुनिए उसके बाद आते हैं और बात करने

0: Alive 90.5.
1: Looking to stay connected to what's happening in your community? The Independent magazines bring you the stories that matter most across the Hawkesbury, Hills and Blacktown. With over 54,000 copies in 180 stands, we champion local people, local business and local events every month. Pick up your free copy today and support the publication that proudly supports your community. The Independent. Local, trusted and truly yours. Station sponsor.
2: Looking for a fresh approach to real estate? At Bookfitch Estate Agency, we put people first, making the process smooth and stress-free. Whether it's selling your home, managing your investment, or finding your next move, we're here for you. Discover how property should feel professional, personal, and tailored to you. Visit us online at bookfitchestateagency.com.au or follow us on socials today.
3: Station sponsor.
4: आपका स्वागत है इंडिया कनेक्ट में मेरे वीना शशि कुमार के साथ. अच्छा, अब इसमें हम बात करेंगे थोड़ी स्पोर्ट्स के बारे में. वैसे स्पोर्ट्स महिलाओं को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक तो सारे जो मेरे घर में तो मेरे डैडी और मेरे भाई थे जो पूरा टाइम हर टाइम क्रिकेट देखते थे. लेकिन आजकल स्पोर्ट्स सबको अच्छा लगने लगा है, स्पेशली क्योंकि इंडिया का जो विमेंस टीम है वो वर्ल्ड कप मोड पर है. जो इंडियन टीम की जो कप्तान है हरमनप्रीत कौर, उन्होंने अपना T20 सीरीज इंग्लैंड के आगे ख़त्म कर दिया है और अभी जा रही हैं ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और वेल्स में. 20 साल पहले जो विमेंस क्रिकेट हार्डली अपने हेडलाइन में कभी कभी दिखाई देता था, लेकिन आजकल पूरी दुनिया पे छाया हुआ है. ऐसे ही विमेंस ICC ने अनाउंस भी किया है रिकॉर्ड प्राइस पूल जो 8.7 मिलियन यूएसडी का है, जो विमेंस T20 वर्ल्ड कप का जो रैपिड ग्रोथ है उसको दर्शाता है. तो ये तो बड़ी, मतलब विमेन जब क्रिकेट में आ गई हैं तो हमारी भी दिलचस्पी बढ़ गई है ना, क्योंकि हमारे मतलब का काम है. और दूसरा ये कि जो विमेंस हॉकी टीम है, इंडिया ने हॉकी टीम का नया हॉकी टीम अनाउंस किया है. FIH विमेंस नेशनल कप ऑकलैंड में जो हो रहा है न्यूजीलैंड में जून में, तो उसकी कप्तान है सलीमा तेते और उन्होंने अपना हॉकी का जो वर्ल्ड कप का दौर शुरू किया है अभी. और ये तो मतलब मुझे लगता है चकदे के बाद हम सभी कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी लेने लगे हैं विमेंस हॉकी में, और हमारा राष्ट्रीय खेल है तो दिलचस्पी लेना भी चाहिए. और जो एक और जो न्यूज़ मुझे दिखी इसके बारे में जो थी, दो यंग टैलेंट जो उभर के आ रहे हैं अभी, सॉरी अगर मैंने गलत नाम लिया तो, लेकिन एक तो है लता और एक है शिल्पी दबास. लालथन लालुंगी और शिल्पी दबास, इनको एक अच्छा मौका मिला है अपने आप को साबित करने के लिए, क्योंकि इनकी टैलेंट जो है रिकग्नाइज होने लगी है. जो तो हॉकी और क्रिकेट जो विमेंस टीम है, आई एम सॉरी आज मेरा पहला शो है और मैं आज थोड़ा अपना बायस दिखा रही हूँ विमेन और हमारे शो के बारे में. वैसे IPL तो चल ही रहा है और बहुत ही बढ़िया चल रहा है. मैंने सुना विराट कोहली की टीम जीत रही है, उनका वो जो लक है वो थोड़ा कम, वो टूट गया बैड लक. तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में, जो जैसे हमेशा चलती रहती है. इंडिया और स्पोर्ट्स का तो काफ़ी साथ है. वैसे ये स्पोर्ट्स से याद आया चकदे का गाना, सुनिए ज़रा.

0: Alive 90.5.
1: आपका वापस स्वागत है इंडिया कनेक्ट मेरे वीना शशि कुमार के साथ. और अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है शो, तो हम मैं बात करना चाहती हूँ दो थोड़ी चीज़ें जो मुझे पता चली हैं. आज अगर आपने ऑलरेडी बुक नहीं किया है तो फिर अनिरुद्ध का एक शो हो रहा है जो साउथ के स्टार हैं और काफ़ी हिंदी गाने और बादशाह के साथ भी आए हुए हैं, तो अगर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं. और दो तीन कम्युनिटी इनिशिएटिव्स के बारे में मुझे पता चला है. एक तो है कुटुंब, जो कुछ लोग मिलके बॉकम हिल्स और हिल्स एरिया में अपना एक फ्री एक तो व्हाट्सएप ग्रुप है जहां मिलके वो योगा करते हैं, वॉकिंग करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं. और मैं इसके बारे में और बताना चाहूँगी आपको, लेकिन आज थोड़ा वक्त की तंगी है तो फिर हम इसके बारे में और बात करेंगे. हो सके तो फिर कुटुंब से किसी को ले आएं और बात करें ज़्यादा उनके बारे में. तीसरी बात ये है कि मैंने सुना कि एक सपा क्लब है, इसके बारे में भी थोड़ा ही जानकारी है, लेकिन आप गूगल करके और पता कर सकते हैं. एक हीर शाह हैं जो चलाती हैं इसको, जिसमें आप मिल के अनजान लोगों के साथ

0: के बारे में. और भाई इंडियन शो बॉलीवुड के बिना ख़त्म नहीं होता. तो जो नई मूवीज़ आ रही हैं उसके बारे में जस्ट थोड़ा सा बोलना चाहूँगी. एक तो है लव एंड वॉर, रणबीर आलिया और विक्की कौशल का नया आ रहा है. आवारापन 2 आ रहा है जो इमरान हाशमी का है. और कॉकटेल 2 आ रहा है जो ये महीने में ही रिलीज़ होने वाला है. तो बॉलीवुड तो मतलब हमारे लिए बहुत मायने रखता है. इसके अलावा मैंने सुना है माधुरी दीक्षित का एक नया OTT प्लेटफॉर्म में माँ बहन माधुरी और तृप्ति धिमरी का रिलीज़ हुआ है. इसके और करिश्मा जी का भी एक करिश्मा कपूर का एक नया OTT में रिलीज़ हुआ है ब्राउन. और अगर आप कोई मुझे बताएं कि किसी ने देखा हो तो मुझे डेफिनेटली बताएं कि कैसा है. और उसका रिव्यू भी करेंगे हम अगले शो में या फिर बाद में. एक एक थोड़ा थोड़ा थोड़ा करेंगे, बहुत चीज़ें बात करने के लिए. और हम अभी हाजिर होते हैं 2-3 मैसेजेस के बाद. और मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपके कोई भी कम्युनिटी इवेंट्स हो रहे हैं जिसमें आप लोगों को इनवाइट करना चाहें, ये माध्यम को इस्तेमाल करें और मुझे बताएं कि आप क्या कर रहे हैं तो मैं बता सकूं, जो भी सुन रहे हैं उनको बता सकूं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड भी है तो बाद में भी कोई सुन सकता है. तो अभी हाजिर होते हैं 1 मिनट में, फिर उसके बाद मैं.
1: Transform your home with Hartwood Floors. Proudly family owned for over 30 years. From solid timber, parquetry, laminate and hybrid flooring to expert resanding and polishing. Discover premium plantation shutters and blinds. Visit our Seven Hills showroom today and experience quality craftsmanship with personalized customer care. Hartwood Floors, where tradition meets innovation and every detail matters. Visit us at www.hartwoodfloors.com.au. Station sponsor.
2: Want to know what's happening where you live, work and play? Para News is Parramatta's only weekly newspaper, and we're here for the community. The latest news, sport, entertainment and more, including giveaways and puzzles every single week. Plus, check out all the great offers from local businesses. Get your copy at more than 50 locations across Parramatta or visit paranews.com.au. Para News, your independent local voice. Station sponsor.
0: आपका लास्ट सेगमेंट में स्वागत है. आज हमारा सफ़र अभी ख़त्म होने वाला है, लेकिन इसके पहले मैं बताना चाहूँगी कि आप यूज़ करें अलाइव को मुझे अपनी कहानियाँ बताने. या आपकी यादें हो इंडिया के बारे में, जैसे चित्रहार देख रहे थे या फिर क्रिकेट में अपनी एंटेनाएं घुमा रहे थे या फिर जो ब्लॉक आइसक्रीम हम लोग खाते थे उसके बारे में, या फिर यहाँ आप कैसे आके कहाँ कहाँ रहे, आपका जो यहाँ का सफ़र था ये कैसा था, ये मुझसे बात करें. अगर आप कॉल कर सकते हैं तो आप अलाइव में कॉल कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल करें. मेरा शो वैसे ऑनलाइन आप वापस अब सुन सकते हैं मेरे शो को, तो आप ज़रूर मुझसे कनेक्ट करें इंडिया कनेक्ट शो के लिए और मुझसे बातें करें. ढेर सारी मैं आपसे और न्यूज़ लेके आना चाहती हूँ, तो आप आके मुझसे बात करें. आज का हमारा सफ़र आज ख़त्म होता है, और इस सफ़र को ख़त्म करने के लिए AR रहमान का ये प्यारा गीत.